तमाम लीडरां ते भी वड्डे ने जिहड़े मगरमच्छ वाले हंजू वहा के उस परिवार को लाए, पर इंसाफ लिए उन्होंने हुण तक कुछ नहीं किया। कितने सीबीआई जांच? पार्लीमेंट से बोल के मैं लगता अमित शाह भी मुकर गए, ये सवाल बनता है और करना चाहिए। खैर बिट्टू की गल्लां तां ते मैं लगता पंजाब के लोगों को एतवार करना ही नहीं चाहता, मैं लगता उन्होंने तो परिवार नहीं एतवार करता हूँ उन्होंने गल्लां ते। मैंने कहने से कोई गुरेज नहीं है ना कोई दोहराया। रवनीत बिट्टू दीआं गल्लां ते पंजाबी एतवार करना बंद कर दो। वो पिछे कहते जी जांच कराओ, मैं नहीं तो वो जनाब पहला तुसी यह देखो चल की रहा, ये थोड़ी कारपोरेशन थोड़े सेंटर सरकार की एजेंसियां ने सवाल खड़े कर रही। चिट्ठी मैं सीधे तौर पर है कि FCI ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को पूछे है कि जो FCI ने पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन को गोदाम टेंडर च गड़बड़ा लिए घेरिया कि जो 50,000 मैट्रिक टन कपैसिटी वाला गोदाम बनाना सी वही वाला टेंडर कि उस कुछ गलतियां ने जिन्होंने जुड़िया महत्वपूर्ण गलतियां ठीक तरह नहीं वेख्या गया टेंडर के। वो कह रहे हैं कि वही टेंडर है जिहड़ा गगनदीप रंधावा सुसाइड केस नाल जुड़िया होया और इस मामले च साबका मंत्री लालजीत भुल्लर का भी जिक्र आया और बाबा नागा एग्री प्राइवेट लिमिटेड नूं टेंडर मिलण ते सुखदेव सिंह ने एतराज़ दायर किया और दावा कि साइट की दूरी पट्टी रेलहैड की बजाय तरन तारण रेलहैड तो मापी गई जो नियमों के खिलाफ सी। हुण आ रही कहानी समझ? अधिकारियों ने गैर रस्मी तौर पर कहा कि एतराज़ों विच वड्डी गल नहीं, जबकि FCI ने कहा कि चुनी गई साइट निर्धारित पैरामीटर तो बाहर है। FCI ने कहता और साइट इंस्पेक्शन कमेटी की रिपोर्ट में भी ठीक तरीके ध्यान नहीं दिता गया, यानी कि जीडी कमेटी वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने बनाई थी उन्हें भी अपनी रिपोर्ट में ठीक तरीके पेश नहीं किया। खैर हुण MD गौतम जैन ने कहा कि वो इस मामले तो बाद में जवाब देंगे, यानी कि हुण जवाब मंगणगे। चिट्ठी मैं हुण नाल ला रहा, हुण चिट्ठी तुसीं वेखो अंग्रेजी च चिट्ठी लिखी हुई है, फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया वालों लिखी गई है द मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन चंडीगढ़ नूं, और उहदे च लिखा गया है, मैं हुण पंजाबी च उहनूं पढ़ दिंदा, मैं तुहानूं असार दस दिंदा इहदा की है। इस चिट्ठी दे विच कहा गया सेवा विखे मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन चंडीगढ़ विशा PSWC वालों 10 साल PEG स्कीम हेठ 50,000 मैट्रिक टन के कवड़ गोदाम ने निर्माणी पहला भेजे गए पत्र और संचार उसका हवाला दिता गया जो इन्हों के विचकार चिट्ठी पत्री चली FCI ते वेयरहाउसिंग कारपोरेशन के विचकार। कहानी की है हुण चिट्ठी की कहा जा रहा है, उपरोक्त संचारां दे संदर्भ विच दस्या जांदा है कि कवर्ड स्टोरेज समर्था की लोड़ संबंधित केंद्र ते स्टोरेज गैप ते निर्धारित रेलहैड के आधार पर अंकलित की गई सी। इसनों SLC अते HLC वालों मंजूरी दिती गई। इस अनुसार भिखीविंड या पट्टी केंद्र ते 50,000 मैट्रिक टन के गोदाम की मंजूरी दिती गई सी जिसका निर्धारित रेलहैड पट्टी सीगा। पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन ने नोडल एजेंसी होने के नाते टेंडर जारी किया जिस विच पट्टी नूं ही निर्धारित रेलहैड दर्शाया गया। टेंडर दे विच 15 सितंबर 2025 टेंडर खोलण तो बाद 16 सितंबर 2025 साइट इंस्पैक्शन लई हुकम जारी किए गए जिस विच केंद्र ते रेल हैड स्पष्ट दर्शाया गया कि पट्टी ही है। साइट इंस्पैक्शन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में साफ कहा कि एक बिडर जिदा नाम मैसर्स यानी कि फर्म बाबा नागा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड दी साइट पिंड उस्मान जिला तरन तारण स्थित है अते इसका सब तो नेड़ला रेलहैड भी निर्धारित नहीं है। इस तो यह स्पष्ट होंदा सी कि साइट निर्धारित केंद्र ते रेलहैड दी शर्तां तो बाहर आउंदी है और यह महत्वपूर्ण गल ठीक तरह ध्यान विच नहीं लई गई। यह भी दोहराया जाता है कि पंजाब स्टेट वेयरहाउसिंग कारपोरेशन जो कि टेंडर जारी करन ते टेक्निकल इवैल्यूएशन की जिम्मेवारी एजेंसी है नू मॉडल टेंडर फॉर्म यानी कि MTF अनुसार बिडा की सख्ती नाल जांच करनी चाहिए सी। MTF दे आर्टिकल 60 अनुसार जे साइट निर्धारित रेलहैड तो 8 किलोमीटर तो वध दूर है तो फाइनैंशियल बिड विच 0.07 प्रति क्विंटल प्रति किलोमीटर के हिसाब नाल नॉर्मलाइजेशन लागू करना लाजमी है जो एक तो वध बिड मिले होण जे एक तो वध बिड मिले होण। निर्धारित रेलहैड स्टोरेज ते मूवमेंट की योजना का अहम हिस्सा होंदा इसलिए MTF दे नियमां विच कोई अस्पष्टता नहीं है। यह भी वेख्या गया कि भिखीविंड केंद्र लिए PSWC वालों की गई फाइनैशियल इवैल्यूएशन पहला ही 2 मार्च 2026 हुई और SLC मीटिंग में पेश की जा चुकी है और यह चिट्ठी भेजी गई है। मतलब यह चिट्ठी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जे डॉक्टर गगनदीप रंधावा ने या उन्होंने जोड़े इल्जाम लगे कि वो टेंडर

रात बिना मेरे दर्द कहानी लिख दे रहे, दर्द कहानी लिख दे रहे, कागज कलम दवात बिना हो मेरे

0: तेरी।
1: क्या बात, क्या बात,
0: मैंने
1: बहुत
0: मैंने बड़ी
1: बहुत।
0: चीजें पसंद सी हैं। मैंने बड़ा मैं गालन से बहुत अच्छे तरीके
1: हाँ हाँ
0: पर बड़े औखे आए।
1: पर बहुत जच दे थोड़े मुंह, तुसी हिंदी भी मौका अजे भी मिलता है ना, तो तुसी गा दियो।
0: डेफिनेटली गाऊंगा, बस तुझे दुआ करनी है।
1: बहुत बहुत मेरे वालों तो बहुत आशीर्वाद भर भर
0: थैंक यू
1: के।
0: थैंक यू जी।
1: चल होर कुछ अपने वालों तुसी कोई स्नेहा देना आपदे श्रोतिया नूं जां कुछ।
0: देखो जी स्रोते, हुण मेरे जिन्ने भी चाहुण वाले है जां मैनू किसी भी चंगे कलाकार नूं तुसी सुणदे हो, उहनूं प्यार दिओ, है ना, उहनूं रुलण ना दिओ। क्योंकि ना तां इहदे 'च कोई प्रोड्यूसर दा रोल हुंदा, ना ही कलाकार दा आपदा कोई रोल हुंदा। कि कलाकार कहे मैं आपदे करके बनया, मेरे च गुण सीगा तां बनया, जां प्रोड्यूसर उठ के कहे मेरे पैसे लाए करके, मैं प्रमोशन दित्ती करके मैं बनाया, ऐसा कुछ नहीं है। ये च सब तो वड्डा रोल है लोगों का, साढ़े स्रोतियों का, जिन्होंने सानू बनाना है। सो मैं यही बेनती करता सारे नू, चंगा सुनो और चंगे जिहड़े गाउंदे आ उन्होंने प्यार दिओ, बस। बाकी थोड़े तो वड्डा कोई नहीं हैगा, तुसी सारे जिउंदे वसदे रहो, प्यार करते रहो, इदां ही मेरे वर्गे आर्टिस्टां नू, बल्ले बल्ले आ।
1: सही गल। चलो मेरे वालों भी आशीर्वाद फिर तो, कि परमात्मा
0: थैंक यू जी।
1: थोनू जिथे तुसी पहुंचना चाहते हो, वैसे पहुंचे तो तुसी बहुत अगे तक हो,
0: जी
1: ते थोड़ियां समरादा वाहिगुरु सच्चे पातशाह पूरियां
0: थैंक
1: करे।
0: यू सो मच,
1: फिर
0: थैंक
1: थोड़ा
0: यू सो
1: ओनली
0: मच।
1: बहुत थैंक यू सो मच, गलबात कीती मैनूं तां बहुत चंगा लग्या।
0: थोड़ा टाइम देने लई मैनूं बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा टाइम ज़्यादा कीमती है।
1: थैंक यू। सो ए सी जी अज दी गलबात तनवीर गोगी जी नाल, ते उम्मीद है थोनू भी गलबात पसंद आई होगी। तुसी भी सारे खुश रहो, आबाद रहो, सारे नूं सत श्री अकाल।

0: ने महाराणी जिंद कौर तो सारे अधिकार वापस ले ले। उस दी जगह एक कौंसल ऑफ रेजेंसी कानून बना दिता। पर असल विच ए चाल सी अंग्रेजा दी, ए नाम दा कानून सी। असल च हकूमत अंग्रेजा दी सी। ओ डरदे सन महाराणी जिंद कौर तो, ते जानदे सन के महाराणी पंजाब दे तख्त ते बह के खालसे दे राज नूं चला सकती है। इसलिए उस बारे कहा गया मेज़ालीना ऑफ पंजाब। मेज़ालीना एक हेरा फेरी करन वाली रोमन महाराणी जो करूर ते जालिम सी। महाराणी जिंद कौर की तुलना उस नाल कीती गई ते उसनूं बदनाम कीता गया। एक झूठ जो एक मां ते सूझवान महाराणी दी ताकत नूं दबाउण लई बनाया गया। जिंद कौर नूं कैद कर लिया गया
1: ते उस मां नूं उसदे 5 साल दे दलीप सिंह तों जबरदस्ती वख कर दिता गया।
2: शेखूपुरा दे किले विच कैद महाराणी जिंद कौर हनेरे कमरे विच बैठी दिल दे दर्द नूं शब्दां विच बुणदी है।

निरंजन सोए जिन सेविया तिन पाया मान, नानक गावीए गुणी निदान। गावीए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पार हर सुख कर ले जाए।

ते बावन हारे किते राग परी स्यो कही अन किते गावन हारे। गावह तोहनो पौन पानी बै संतर गावह राजा धर्म द्वारे गावह।

तुद भावन रते तेरे भगत रसाले, होर किते गावन सी मैं चित नावन, नानक क्या विचारे। सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाय न जसी रचना जिन रचाई। रंगी रंगी भांति कर कर जिन सी।

लीक है, निरसरीक है, निर्लंब है, असंभ है, अगम है, अजम है, अपूत है, अशूत है, अलोक है, अशोक है, अकर्म है, अपर्म है, अजीत है, अपीत है, अबाह है, अगाह है, अमान है, निदान है, अनेक है, फिर एक है, भुजंग प्रयात छंद। नमो सर्वमान्ये समस्ति निदाने, नमो देव देवे अपेखी अपेवे, नमो काल काले, नमो सर्व पाले, नमो सर्व गौणे, नमो सर्व पौणे, अनंगी अनाथे नरसंगी परमाथे, नमो पान पाने, नमो मान माने, नमो चंद्र चंद्रे, नमो पान पाने, नमो गीत गीते, नमो तान ताने, नमो नृत्य नृत्य, नमो नाद नादे, नमो पान पाने, नमो बाद बादे, अनंगी अनामे समस्ति स्वरूपे परपंगी परमाथे समस्ति विभूते, कलंकंग बिनाने कलंकी स्वरूपे, नमो राज राजेश्वरंग परम रूपे, नमो जोग जोगेश्वरंग परम सिद्धे, नमो राज राजेश्वरंग परम वृद्धे, नमो शास्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, नमो परम ज्ञाता, नमो लोकमाता, अपेखी अपरमी अपोगी अपुगते, नमो जोग जोगेश्वरंग परम जुगते, नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, नमो प्रेत प्रेत देवे सुतर्मे, नमो रोग हर्ता, नमो राग रूपे, नमो शाह शाह, नमो पूप पूपे, नमो दान दाने, नमो मान माने, नमो रोग रोगे, नमस्तंग स्नान, नमो मंत्र मंत्रंग, नमो जंत्र जंत्रंग, नमो इष्ट इष्टे, नमो तंत्र।

अंतरंग सदा सचिदानंद सर्वं परणासी अनुपे अरूपे समस्त निवासी सदा सिद्धदा बुद्धदा वृत्तकर्ता अदो उर्द अर्दं अगंग ओघहर्ता परं परम परमेश्वरं पुरुष पालं सदा सर्वदा सिद्धदाता दयालं अशेदी अभेदी अनामं अकामं समस्तो पराजी समस्तस्तामं तेरा जोर चाचरी छंद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेस हैं भुजंग प्रयात छंद अगादे अबादे अनंदी स्वरूपे नमो सर्वमाने समस्ति निदाने नमस्तवंग नरनाथे नमस्तवंग परमाथे नमस्तवंग अगंजे नमस्तवंग अपंजे नमस्तवंग अकाले नमस्तवंग अपाले नमो सर्वदेशे नमो सर्वपेशे नमो राजराजे नमो साज साजे नमो शाह शाहे नमो महामाहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतंग नमो सर्व पीतंग नमो सर्व ज्ञानंग नमो परम तानंग नमो सर्व मंत्रंग नमो सर्व जंत्रंग नमो सर्व दृश्यंग नमो सर्व कृत्संग नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे नमो जीव जीवंग नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सदा सर्वदारिद सिदंग निवासी चरपट छंद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं तराणं सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुआल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूर्त जोन पुरख अपार सर्वमान त्रिमान देव अपेवाद उदार सर्वपालक सर्वकालक सर्वकोपन काल जत्र तत्र विराज ही अवतु

चरपट चंद त्वे प्रसाद सर्वंग हंता सर्वंग गंता सर्वंग ख्याता सर्वंग ज्ञाता सर्वंग हर्ता सर्वंग कर्ता सर्वंग प्राणं सर्वंग त्राणं सर्वंग कर्मं सर्वंग धर्मं सर्वंग जूता सर्वंग मुक्ता अरसावल छंद त्वे प्रसाद नमो नरक नासे सदैव प्रकाशे नंगंग स्वरूपे अपंगंग विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्वाद विभूते अनंगी अनामे तरभंगी तरकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनुपे न पुत्रे न पुत्रे न सत्रे न मित्रे न ताते न माते न जाते न पाते निरसाकं शरीक है अमितो अमीक है सदैव प्रवाह है अजय है अजा है भगवती छंद त्वे प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं मे सुल सलाम है समस्तुल कलाम है के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज करहिंद हैं करी मुल्क माल हैं के हुसनल जमाल हैं गनी मुल्क राज हैं गरीब लिवाज हैं हरी फुल शिकान है हरा सुल्फकान है कलंक प्रणास है समस्त निवास है अगुंजल गनी मेहर जाय करहीम है समस्तुल जुबा है के साहिब करा है के नरकंक प्रणास है बैस्तुल निवास है के सर्वल गुवान है हमें सुलरवान है तमामुल तमीज है समस्तुल अजीज है परम परम ईस है समस्तुल अदीस है देसल अलेख है हमें सुल अपेख है जमीन उल जुमा है अमी कुल इमा है करीमुल कमाल है के जुरत जमाल है के अचलंग प्रकाश है के अमित सुभाष है के अजब स्वरूप है के अमित विभूत है के अमित उपसा है के आत्म प्रवाह है के अचलंग अनंग है के अमित उपांग है मद पर छंद त्वे प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण।

मुदाम हर बर अगंज हर नर प्रपंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनछिंज अंग आसना भंग उपमा अपार।

काल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनश जुगात अज जिना बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन ठट अपार अडीठ धर्म अत ढीठ करम अन ब्रण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वे प्रसाद करुणालय है अरकालय है खल खंडन है महमंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्वोभारण है त्रित के तरन है जग के करण है मन माने हैं जग जाने हैं सर्वंग पर हैं सर्वंग कर हैं सर्व पासे हैं सर्वनाशे हैं करुणा कर हैं विश्वम्बर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणा कर हैं अजप्पा जप हैं अथप्पा थप हैं अकृता कृत हैं अमृत अमृत हैं अमृत अमृत हैं करुणा कृत हैं अकृता कृत हैं तरणी त्रित हैं अमतेश्वर है परमेश्वर है कृता कृत है अमृत अमृत है अजब्बा कृत है अमृत अमृत है नर नायक है खलकायक है विश्वम्बर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है पव पंजन है अर्गंजन है रिपतापन है जप जापन है अकलंकृत है सर्वाकृत है कर्ता कर है हरतार है परमात्म है सर्व आत्म है आत्मवास है जस के जस है भुजंग प्रयात छंद नमो सूर्य सूर्य न

परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो जुद जुदे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कला करता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे नादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे तरपंगी त्रकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अभय अभय अभू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रयात छंद नमस्तल प्रनामे समस्तल प्रणासे अगंजुल अनामे समस्तल निवासे नरकामंग विभूते समस्तल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुधर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करिमल कुनिंदा समस्तल निवासी अजाय विभूते गजाय वगनी में हरियं करियं करिमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सियंग भग सुभंग।

गुंजत गूड गुजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे। भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात बिचारे। श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम।

साध समूह प्रसन्न फिरे जग सतर सवै अपलोक छपेंगे। मानव इंद्र गजेंद्र नरादप जौन तरलोक को राज करेंगे। कोट स्नान गजादक दान अनेक स्वंबर साज बरेंगे। ब्रह्म महे

की जाने। जब उद करख करा कर तारा, प्रजा तरत तब दे अपारा। जब या करख करत हो कबहूँ, तुम मैं मिलत।

तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे बिद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंक पयो राव कही भूपा। अंडज जे रज सेतज कीनी, उत पुज खान बौर।

ग्रंथ करा पूरन सुबराता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखीन को शय करता। श्री अस्तुज जब पै दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ तत्

राम कली मोहल्ला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां।

जूनी भरम आवे बिन सतगुर मुक्त न पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सतगुरु शब्द सुनाए। कहे नानक विचार देखो बिन सतगुर मुक्त न पाए। आवहु सिख सतगुरु के प्यारे हो गावहु सच्ची बाणी। बाणी ता गावहु गुरु केरी बाणी आसर बाणी। जिनको नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवहु अमृत सदा रहो हर रंग जपहु सारंग पाणी। कहे नानक सदा गावहु यह सच्ची बाणी। सतगुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सतगुरु बज होर कच्ची बाणी। कहिंदे कच्चे सुनदे कच्चे कच्ची आँख वखाणी। हर हर नित करहै रसना कहया कछु न जाणी। चित जन का हिर लिया माया बोलन पैर वाणी। कहे नानक सतगुरु बज होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो होआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया पाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनु दे बुझाए। कहे नानक शब्द रतन है।

गुरु नमः जुगाद गुरु नमः सतगुरु नमः श्री गुरुदेव ई नमः अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख

पूरे प्रभु का सिमरन कबो न चूरे। प्रभु का सिमरन हर गुणवाणी, प्रभु का सिमरन सहज समानी, प्रभु का सिमरन निचल आसन, प्रभु का सिमरन कमल विगासन, प्रभु का सिमरन अनहद चुनकार, सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार।

संत हृदय वसै, संत प्रताप दुरत समनसै। संत का संग वड़ भागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है।

तारे तोय धरता प्रिय प्रसन्न संग होए। अंधकू में पतत बिकराल, नानक काढ़ लियो प्रभ दयाल। करतूत पशु की मानस जात, लोक पचारा करे दिन रात। बार पेख अंतर मल माया,

पर निंदा सुने, मिथ्या हस्त पर दर्व को हिरे, मिथ्या नेत्र पेकत परत्र रूपाद, मिथ्या रचना पूजन अनस्वाद, मिथ्या चरण पर विकार को तावे, मिथ्या मन पर लो लुभावें।

हे वशपति जिहें प्रसाद शक्ति अमृत खाएं तिस ठाकुर को रख मन माहें। जे प्रसाद सुगंधत तन लावें तिस को सिमरत परम गत पावें। जे प्रसाद बसें सुख मंदर तिसे त्याए सदा मन अंदर। जिहें प्रसाद गृह संग सुख बसना।

जय। जे प्रसाद असव हस्त असवारी, मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी। जे प्रसाद बाग मिलक तना, राख प्रोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन मंत बनाई, टूट बैठ सत सह त्याई। तिसे त्याय जो एक अलख है, ही आऊँ नानक तेरी रख है। जे

चितारी जे प्रसाद तेर सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप। जेह प्रसाद तेरी नीति जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जेह प्रसाद तेरी पात्र है गुरप्रसाद नानक जस कहै। जे प्रसाद सुने करण नाद जे प्रसाद ते कह विस्माद। जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुख सहजे बसना। जे प्रसाद हस्त कर चलें जे प्रसाद संपूर्ण फलें। जे प्रसाद परमगत पावें जे प्रसाद सुख सहज समावें। ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो। जे प्रसाद तू प्रगट संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप प्रेमन मूड तुता को जाप। जे प्रसाद तेरे कार्ज पूरे तिसें जान मन सदा खजूरे। जे प्रसाद तू

साध के संग एक उपरजत है न, साध की महिमा वर्णे कौन पुरानी, नानक साध की शोभा परमाय समानी, साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा प्रफुल्ले, साध के संग आवे बस पंचा, साध संग अमृत रस पुंचा, साध संग हुए सब की देन, साध के संग मनोहर बैन, साध के संग नकत हूँ थावै, साध संग अस्थित मन पावै, साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रव सो प्रसन्न, साध संग दुश्मन सब मीत, साधु के संग महापुनीत,

मूर्ति मुझी साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रभेद न पाई। श्लोक मन साचा मुख साचा सोए, और न पिक एक बिन को।

तिसमलै जिस लिखिया तुर करम, जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास, तिसका नाम सत रामदास, आत्म राम तिस नदरी आया, दास दसंतन भाई।

कई कोट परदर्भ को हिरें, कई कोट पर दुख न करें, कई कोट माया सरमाहें, कई कोट परदेश परमाहें, जित जित लावो।

कई कोट पंखी सर्प उपाए, कई कोट पाथर बिरख निप जाए, कई कोट पवन पाणी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट सस्यर सूर नक्षत्र, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तार, नानक जिस जिस भावै।

नहीं छुटे। संत के दुखन सुख सब जाए, संत के दुखन नरक में पाए। संत के दुखन मत कोई मलीन, संत के दुखन शोभा तिहीन, संत के

कृष्ण बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त मैं सोई।

0: सच्चै सब तान सच्चै सब जो सच्ची तेरी सिफत सच्ची साला सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच ने कच महला पहला
1: वड्डी वडेजा वड्डा नाओ वड्डी वडेजा सच ने आओ वड्डी वडेजा ने चल थाओ वड्डी वडेई जाने आलाओ वड्डी वडेई बूझे सब पाओ वड्डी वडेजा पुछना दात वड्डी वडियाई जा आपे आप।

पौड़ी से किसी संतोख ही जिन सोचो सच ते आया उन्हें मंदे पैन रख कर सुकृत कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंदना अन्न पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला दे देवे चिड़े सवाया।

0: जिन करते करना किया चिंता पी करनी ताम सो करता चिंता करे जिन उपाया जग ते जवारी स्वास तिस तिस दे बाण पाकु नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
1: लख नेकियां चंगियाईयां लख पुन्ना परवान लख तपु प्रतीर्थां सहज जोग बेबाण लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िया पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया अवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निसान।

0: पड़ पड़ गड़िए खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती आरजा पड़िए जेते सास नानक लेखे एक गल पुर हो मैं चकना चाक माला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहुत तीर्थ पव्या ते तो लव्या

सच ता पर जानिए जा हृदय सच्चा होए कूड की मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच ता पर जानिए जा सच तरे प्यार नाओ सुन मन रहसिए ता पाए मोख द्वार सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो तरत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सच्ची ले दया जाने जी की किछ पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बहरह करे निवास सच सबना होए दारू पाप कड़े तोए नानक वखाने बेनती जिन सच पल्ले।

और डाल महंगा तलिखा के मेरा तमस्त कलाई है कूड़ा लाल छटके वो एक मरला कते आई है फलते वे हो पाई है जे वे ही कर कमाई है जे हो वह पूर्व लिखिया था तूरतना दी पाई है मत थोड़ी सेव गुवाई है मत थोड़ी।

लब पाप दोय राजा मेहता कूढ़ुआ सिकदार काम ने सत पुछिए बह बह करे विचार अंधी रयत ज्ञान भी होनी पाए परे मुरदार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार ऊचे को कहवा दा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुजत संजय करे प्यार धर्मी धर्म कर है गावा वह मंगे है मोख द्वार जति सदा वे जुगत न जाने छठ बह कर बार सबको पूरा आपे हो।

पौड़ी तुर कर मजना को दुध पाया ता तिन्ह खसम ते आया। इना जनता कह बस कृष्णा जित वेखी जग दु पाया। एक नानों तो मेल लह एक आप दुध खुआया। गुर कृपा ते जाने जिथे दुध आप बुझाया। सहज ही सच समाया।

शब्दं ब्राह्मणे खत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृते सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन देव।

श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावे। ऋग कह रहे भरपूर राम नाम देवा मैं सूर नाय ले प्रच जाहे नानक तो मुखंतर पाहे। जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रावन में रंग किया। कल मैं वेद अथर्वण हुआ नाव खुदाई लो भया नील बस्त ने कपड़े पहरे।

0: महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सिल पूज बगल समादंग मुख झूठ भी पुखन सारंग त्रैपाल तिहाल बिचारंग गल माला तिलक ले लाटंग दुए तोती बस्तर कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमंग सब फोकट निश्चौ करमंग कहो नानक नहचौ त्यावै बिन सतगुर वाट न पावे।

साई भय दया कृपा करे ता साई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुकुम नाए सी हुकुम नावे प्रमाणता खसमे का महल पाए सी खसमे पावे सो करे मनो चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैंदा जाए

और सब को आखे अपना जिसना ही सोचन कढ़िए किता आपो अपना आपे ही लेखा संडिए जा रहना ना ही ऐत जगता कायत गर्भ हंडिए मंदा किसे ना आखिए पर अखर एहो बुझिए।

0: तू बच जाएगी।
1: बचाओ।
0: कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए।
2: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
3: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
0: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर से लड़ने के लिए,
3: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
4: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
3: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
5: गिग एक्सप्रेस जो कि हायर कर रहे ने ओनर ऑपरेटर अते कंपनी ड्राइवर फॉर सिटी वर्क एंड मॉन्ट्रियल ट्रिप। जे तुसी ओंटारियो दे किसी भी सिटी च रहने हो ते मिसिसागा तो ओशवा या मिसिसागा तो विंसर दे लोड लेना चाहने हो ते आज ही कॉल करो 905-615-0544 एक्सटेंशन 6013 गिग एक्सप्रेस।
6: क्वांटम फाइनेंशियल प्लानिंग 1998 तो इंश्योरेंस अते इन्वेस्टमेंट दियां सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह के लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस,
7: गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लान जिमें RRSP, RESP या TFSA अते नॉन रजिस्टर्ड प्लान विच 8-12% रिटर्न लैण लई तुसी क्वांटम फाइनेंशियल प्लानिंग दे किसी भी एडवाइजर नाल कंटैक्ट कर सकते हो।
8: जेकर तुसी भी साडी टीम नूं ज्वाइन करना चाहुंदे हो, $60,000 ते $1,00,000 दी सलाना इनकम किवें लै सकदे हो, ओहदे वास्ते हुणे ही सानूं संपर्क करो।
9: रब ना करे जे तुहाडी कार, ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है, तां फिकर करन दी जरूरत नहीं, अज ही कॉल करो ST टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने। ST टोइंग।
10: Sarai Trucking, the name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 di friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lain layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai Trucking.
9: रब ना करे जे तुहाडी कार, ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है, तां फिकर करन दी जरूरत नहीं, अज ही कॉल करो ST टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने। ST टोइंग।

साहब गौरव यादव ने एक गल कही। हुण गल ये आ जे सारे चैनल दिखा सकन जे दिखाउंदे होणगे क्योंकि चीफ मिनिस्टर की गल है ये कई उन्होंने लोग बैठ गए होने इस वेले ऑपरेट करन सुचां बंद करन सब तो पहला गर्मी आ गर्मी है टैंपरेचर वधिया होया है इस मुख्यमंत्री भगवंत मान दे सिर ते ठंडा पानी गर्मी दे नाल जो कुछ इस्तेमाल करदे ओ सिर नूं चढ़ गया सिर दे उत्ते ठंडियां सिल्लियां बर्फ दियां रखण दी लोड़ आ जिवें बाहर नींबू वाला भाई नींबू बेचदा ना ठंडा उस वेले ओ उत्ते कपड़ा पा दिंदा भी ओ बर्फ दी सिल्ली खुर ना जावे ते ए बर्फ दी ओ सिल्ली दा मैं इन्हां दे दोस्त मित्रां नूं भी कहना पर इन्हां दे सिक्योरिटी इंचार्ज नूं भी कहना भी ओ बर्फ दी इन्हां दी टकोर करो ए नशा विधान सभा दा पहला ब्रांड होर सी पर विधान सभा दी जदों भी ये सैशन शुरू होया उदों दा ए असर जिहड़ा ए होर तरीके दा हो गया सिर नूं चढ़ गया। दूजी गल मैं ये करना चाहना अज पंजाब वो मुख्यमंत्री दे थले आ जिहड़ा मुख्यमंत्री सिर्फ चुटकलेबाज सिर्फ ड्रामे वो चीजां सिर्फ वो कर सकदा दोबारा उन्हें शुरू कीतियां हुई 4.5 साल बाद भी हुण आ बीजेपी दा ऑफिस आ मीडिया दे मूहरे मैं हिक ठोक के सानू माण अपनी पार्टी ते ते साडे पार्टी दे लीडरां ते वर्करां ते मैं भगवंत मान सिंह तैनू ये गल चैलेंज करदा है आही ऑफिस जिथे ग्रनेड फटिया सी अप्रैल दे महीने तू गल्लां करदा इत्थे साडे लीडरां नू इत्थे साडे वर्करां नू मारन खातर उही आईएसए ने बंब चलाया सी ते आ असीं बैठे हां सारे दफ्तर च 4 बजे का समा है जे तेरे च हुण हिम्मत है जे तू सच आ तेरे च तां तू बीजेपी वर्करां ते बीजेपी लीडरां ते साडे ते केस दर्ज कर हिम्मत आ भेज अपनी पुलिस उरे बीजेपी दफ्तर च भी फड़न आए आ भाई थोड़े ते तुसीं बंब चलाए है हिम्मत तेरे च सारे जिलियां च साडे प्रधान साडी पार्टी हर जिले दे हैडक्वार्टर तों भेज देगी तेरे एसएसपीआं कोल तेरे कमिश्नरां कोल रोक के देखी फिर वो जिहड़े देश भगत लोग ने तू सानू ये गल करदा यार तू देखे है हालात की सी पंजाब दे हालात तेनू पता है पर गल दूजे पासे एक पासे आनंदपुर साहब च बोल रहा दूजे पासे इहदा डीजीपी जिहड़ा पंजाब दा इहदा नहीं पंजाब दा डीजीपी वह प्रैस कॉन्फ्रेंस कर रहे वो कह रहे भी आईएसआई दा ते पंजाब नू डीस्टेबलाइज करन दा पंजाब नू हिलाउण दा मनसूबा है पर सर जनाब मैनू किसी ने कहा भी यार एदा डीजीपी है ये सीएम मैनू नहीं पता ओ मैं उन्होंने कहा डीजीपी एदा नहीं गा डीजीपी दिल्ली वालियां दा है जिन्होंने लवा के रखिया होया एदे नाल इनू डीजीपी कोई इनू फीडबैक नहीं दिंदा कोई डीजीपी एदे थले नहीं गा डीजीपी नाल इहदा कोई संपर्क नहीं गा क्योंकि जो कुछ कराउंदे आ सीधा दिल्लियों कराउंदे ये तो वैसे इनू वह गाणा नहीं कोई पता नहीं की कहिंदे जिहड़ा हुंदा वी रखी आ पटाके पाउण नूं पता नहीं ये तो सिर्फ आ भंडपणा करन नूं रखिया है वी चल निकल गड्डी लैके सवेरे सुना लोकां नूं चुटकले हसा लोकां नूं इस गल्लां च मगर ला के रख अज बीजेपी दफ्तर तो लैके अज एक कांग्रेस पार्टी भी बयान दे रही है ये भी इलैक्शन आ गई मैं इलैक्शन चो आया वैसट बंगाल दी चो जिथे हर एक बूथ ते बंब सिटे जाते जिथे लोगों के कतल किए जाते इस बार इलैक्शन कमीशन ने उत्थे सेंटर दियां पैरामिलिट्री फोर्सिस डिप्यूट कीतियां चाहे वह सी आर पी सी सी एस एफ सी एस एस बी सी एक किते ममता का गुंडा जां जिहड़ा होर एक जगह कोई किते पटाका भी चला सकिया बंब तो बहुत दूर की गल पटाका भी चलाया किसी ने मजबूती पर तेरा की हाल है तू जि

0: दे बार बार लिखती मांग पत्र देन ते नहीं दिता और मेरा सवाल है कि जिदो चोड़ा होंदिया देश उदो इदा दिया घटनावां क्यों होंदिया उदो क्यों बंब चलन डह पैंदे आ अगो पिछो क्यों नहीं चलते। सो मैं समझदा कि सारी साजिश है बीजेपी की, बीजेपी जान बुझ के जो इलेक्शन आउंदी है उदो ही जिहड़ा शांति वाला माहौल है उहनूं खराब करन की कोशिश करदे आ, दहशत का माहौल जिहड़ा वह पैदा करदे आ, ड्राउन का माहौल जिहड़ा वह पैदा करदे आ। इस करके मैं समझदा कि जिहड़ियां इन्नियां वारदातां होईयां पठानकोट वाली दीनानगर वाली बहुत सारिया वारदातां होईयां जिन्हां की मुड़ के कहा गया जांच करांगे जांच करावांगे, अज तक उन्हां दी जांच कित्थे गई, अज तक क्यों नहीं कराई गई, क्यों नहीं दस्या गया लोगों को भी की होया किदा आए अतवादी किदा आए किदा लंघ गए बार्डर साडा, क्यों नहीं दस्या जांदा लोगों को वह जांच का की बनिया। यह भी एक बड़ा वड्डा सवाल है कि जो वारदात होंगी उदो आप कह दें उदो केंद्र सरकार कह दिंदी है कि असी मतलब जरा यदि जांच करा असी इदा करा असी सख्त सज़ा देंगे असी फलान करा, पर वो जांच नहीं होंगी मुड़ के। सो जिमें हुणे ही मैं तुहानू दसदा कि हुणे ही तुसीं वी सारिआं ने पढ़िया होना सुनिया होना पिछले दिन पठानकोट दे विच साडी पंजाब पुलिस दे बहादुर योधिया ने 3 AK-47 ते पिस्तौल ते कई गोलियां बरामद कीतियां जिहड़ियां ड्रोन दे राहीं आईआं सी। हुण ड्रोन दे राहीं वैपन आ रहे आ ड्रग आ रही है, ये इस करके ये चिंता का विषय भी आ, सोचने का विषय भी आ और जांच पड़ताल का विषय भी आ। कह के कह यार हर घटना कह दें जांच करावे जी, और रिपोर्ट कितने आदि जांच वो क्यों नहीं लोगों को दसी जाती, देश के लोगों क्यों नहीं दसी जाती, पंजाब के लोगों जेडे असी बार्डर से बैठे हाँ सानू क्यों नहीं दसी जाती। और मेरा सवाल फिर दोबारा उही है कि BSF के जवानों अज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के वैपन दिते जान, साडे जवान बेचारे बार्डर से खड़े है रात खड़े रेंदे आ बंदूक लैके खड़े रेंदे आ देश की रक्षा लई खड़े रेंदे, उन्हां नूं सलाम है, पर उन्हां नूं टेक्नोलॉजी किन्ने देनी सीगी, उन्हां नूं टेक्नोलॉजी जिहड़ी केंद्र की सरकार जिहड़ी BJP की सरकार सीगी उन्ने देनी सीगी जिहड़ी नहीं दित्ती गई, यह बहुत वड्डा चिंता ते सोचण दा विषय। मैं यह गल कह लिया
1: Come on!

0: ਮੰਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਰਿੰਕ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।
1: अरे भाई इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं वैसे
2: ही। यही तो मैं पूछ रही हूँ कौन सा बैग है, वो बैग ही फट गया।
1: मैसेज डाल लूँ क्या?
3: डाल दो मैसेज। देखो बड़े लंबे समय से भगवंत मान, केजरीवाल पंजाब को बहुत बड़ी लूट का काम चला रहे, और ये लूट के मेन एरिए तीन है, गमाडा और पूडा की कीमती जमीनें किसानों से सस्ते रेट पे लेके बड़े बड़े डेवलपरों को देनी, फिर उस डेवलपरों से किकबैक लेनी। दूसरा काम है थ्रू इलीगल माइनिंग, बहुत बड़े पद्धर पे इलीगल माइनिंग पंजाब में हो रही है, बगैर नंबर के ट्रक्स हिमाचल से आ रहे हैं, जो एंट्री टैक्स बनता है उसको अवेड किया जा रहा है, जो माइनिंग साइट्स अलॉटेड हैं उससे जो एनवायरमेंट क्लियरेंस के नीचे नहीं है उन साइटों में माइनिंग करा के 3 फुट की जगह 100-100 फुट मिट्टी नीचे से निकालनी, वो पैसा भी इलीगल माइनिंग का इकट्ठा होके फिर केजरीवाल भगवंत मान और चैनल क्या है, ये चैनल यही लोग हैं, ये वीर देवेंद्र आज इसके रेड हुई है उसकी मैं एक फोटो नहीं अनेके फोटो दिखाऊंगा कि नैसवाडिया साहब के साथ वो फोटो खिंचा रहे हैं। नैसवाडिया का पता कौन है? नैसवाडिया है जो ये पंजाब किंग्स का मालिक है प्रीति जिंटा के साथ। अब वीर देवेंद्र कैसे जान सकता है या नितिन गोहाल उसको कैसे जान सकते हैं? वो तभी जान पहचान हो सकती है अगर उनकी जान पहचान कोई कराए। ये वीर देवेंद्र है यहाँ पे, ये मैं फोटो शेयर कर रहा हूँ ये राजवीर के साथ, और सबको पता है भगवंत मान और केजरीवाल का, ये देखो केक काट रहे उनका ये, और यहाँ पे ये फोटो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ जहां उस फोटो है ये इनका, ये देखो शेयर करा है। ये नैसवाडिया है, ये कहाँ से जा सकते हैं? नितिन भी इसमें है और ये फोटो, और तीसरा इनका स्रोत है लिकर से। राजवीर की बहुत बड़ी पार्टनरशिप है, एक पंजाब का नामी गैंगस्टर है उसके साथ, और कुछ बिजनेसमैन लोग हैं जो शराब के काम में हिस्सा पत्ती ये रख के, और ये सारी कलेक्शन होके कुछ हिस्सा इनके पास रहता है, कुछ हिस्सा आम आदमी पार्टी के वक वक लीडर के पास जाता है। और अगर जी इसकी इंक्वायरी आज अच्छी तरह हो जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कहाँ से ये पैसे कनाडा जा रहे हैं, कैसे ये पैसे ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ये हवाला का बहुत बड़ा ट्रांजैक्शन है।
4: देखो हमारा तो पहले से कहना था, मगर आज जो ईडी की रेड्स हुई है ये चीफ मिनिस्टर के जो क्लोज एड है, जो इसका फ्रंट मैन है सारे पंजाब में, इसका ओएसडी है चीफ मिनिस्टर का, उसके क्लोज साथियों के जो इनके व्यापार में जो ये गोरख धंधा कर रहे हैं उसमें जिनका हाथ है उन पर रेड्स हुई हैं। और ये पहली दफा मैंने देखा, आगे हिंदी मूवीज में देखा था कि 9वीं मंजिल 10वीं मंजिल से ऊपर से 500-500 के नोट के बैग गिराए जा रहे हैं। तो ये तो असल चेहरा ये आम आदमी नहीं है, ये अरबोंपति करप्शन की पार्टी है। और मेरा पहले ही मानना है कि तकरीबन 25,000-30,000 करोड़ रुपया पिछले 4 साल में पंजाब को लूटकर ये दिल्ली आपकी जो लीडरशिप है ये पैसा निकाल कर लेगी। ये तो अभी ड्रॉप इन एन ओशन कहते हैं, जैसे कि अभी काम ही शुरू हुआ है। हम तो हैरान हैं कि सेंट्रल एजेंसीज ने इतनी देर क्यों किया आने में, ये तो लूट कई सालों से चल रही थी। लैंड पूलिंग की बात कीजिए आप, इनकी एक्साइज कैंप की बात कीजिए, इनकी माइनिंग का काम कीजिए, करोड़ों अरबों रुपए माइनिंग से जा रहे हैं, लिकर स्कैम से जा रहे हैं, और लिकर का भी बहुत बड़ा आपको पता है आगे सीबीआई ने ईडी ने केसेस रजिस्टर किए।

0: अगर अभी तक कुछ और नहीं हुआ, लैंड पूलिंग में हजारों करोड़ों रुपए की ठगी मारनी थी इन्होंने। सो ये सारे बिल्डर से पैसे लिए जा रहे हैं। तो और मैं ये भी बात सेंट्रल एजेंसीज को कहना चाहता हूं, ये इनकी मनी ट्रेल को इधर नहीं छोड़ना। इनका बहुत सारा पैसा ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में है, कनाडा में है, अमेरिका में है और यूरोपियन यूनियन में। तो दे मस्ट रीच टिल द लास्ट पर्सन, ये मेरा कहना।
1: आज पूरा देश दुखी है कि भगवंत मान ने एक राष्ट्रवादी दल पर, जिसने जीरो टॉलरेंस के पर चलते हुए आतंक के समूल नाश का काम किया है, जिन्होंने नक्सलवाद को समाप्त किया है, जहां 200 सीआरपी के जवान शहीद होते थे, आज उस धरती को आतंक से मुक्त किया है। और आप ऑपरेशन सिंदूर के पवित्र दिनों में ऐसा आरोप लगा रहे। एक तरफ पूरा देश अपने सैनिकों की वीरता पर, उनके शौर्य पर नमन हो रहा है और आप पाकिस्तान का झंडा चला रहे। जो भाषा पाकिस्तान की आईएसआई बोल रही है, जो भाषा पाकिस्तान की सेना बोल रही है, वो ही भाषा भगवंत मान बोल रहे हैं। और ये भाषा बोलकर वो आतंकवादियों और राष्ट्र विरोधी ताकतों को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। आईएसआई की विचारधारा को राजनीतिक कवर देने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि बहुत दुखद है। भगवंत मान साहब, सार्वजनिक माफी मांगिए और इस्तीफा दीजिए। आपके कहे हुए अपशब्द करोड़ों भारतीयों के दिल को चीर गए हैं, हर दिल दुखी है। आपने गरिमापूर्ण स्थान का मजाक उड़ाया है, आपने एक राष्ट्र दल को झूठे आरोपों से अपमानित करने का प्रयास किया है। देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। अगर हम अपराधी हैं तो भगवंत मान साहब बताइए, अगर हमने बम फेंका तो बताइए कौन सी जेल में आना, हम जलने को तैयार हैं। बिना सबूत एक राष्ट्रवादी लोगों पर ऐसे आरोप लगा रहे। भारतीय जनता पार्टी आपकी गीदड़ भक्कियों से डरने वाली नहीं है। हम सच जानना चाहते हैं, सच आपके मुंह से सुनना चाहते हैं। आपका डीजीपी स्पष्ट कह रहा है, पंजाब पुलिस का डीजीपी कह रहा है कि ये आईएसआईएस की घटना है, आईएसआई की घटना, इसके पीछे पाकिस्तान का मॉड्यूल है, और आप इसको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ रहे हैं। आपका डीजीपी कुछ कह रहा है जो सच बोल रहा है, और आप राजनीतिक द्वेष से झूठ बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री जी, इस्तीफा दो और माफी मांगो।
2: Gig Express ਜੋ ਕਿ ਹਾਇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਓਨਰ ਓਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਡਰਾਈਵਰ ਫਾਰ ਸਿਟੀ ਵਰਕ ਐਂਡ ਮੋਂਟਰੀਅਲ ਟ੍ਰਿਪ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਓਨਟੈਰੀਓ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਓਸ਼ਵਾ ਜਾਂ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਤੋਂ ਵਿੰਸਰ ਦੇ ਲੋਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ 905-615-0544 ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ 6013 Gig Express।
3: रब ना करे जे तुहाडी कार, ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है, तां फिकर करन दी जरूरत नहीं। अज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने। एसटी टोइंग।

0: इतनी कि पंजाब रब भरोसे है। ये मैं क्यों कह रहा, यह कहने की लोड़ क्यों पै रही है, ये गल मैं करूँगा। बड़े ध्यान इस गल समझियो, बीती रात जिहड़े धमाके होए, पहला जलंधर च होंदा बी एस एफ हैडक्वार्टर के बाहर, यानी कि बी एस एफ चौक जिहड़ा उहदे कोल, और उस तो बाद लेट नाइट पता लगता कि अमृतसर च भी होया, जिहड़ा अटारी नूं रस्ता जांदा उत्थे खासा बेस कैंप, जित्थों बेस कैंप जिहड़ा उस पूरे बी एस एफ एरिए दा हैगा उहदे बाहर। उस तो बाद डी जी पी मौके पर पहुंचे अज सवेरे, खास तौर पर अमृतसर, और डी जी पी ने मौके पर पहुँच के एक गल साफ की कि वह कहते कि असी सारा मुआयना किया, और यह लग रहा है कि जिवें ऑपरेशन सिंदूर की बरसी नेड़े है, क्योंकि साल पूरा होने वाला ऑपरेशन सिंदूर नू, और इस करके ये सारा कुछ आई एस आई स्पोंसर्ड कुछ लोग या पाकिस्तान वालों किया जा रहा है। ये गल डी जी पी ने कही, पर मैं गल क्यों कह रहा अज, मैं इस चर्चा पर क्यों जा रहा, थोड़ा जहा समझना पड़ेगा। पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, पहले डीजीपी साहब का बयान सुन लो, बने रहो, बहुत जरूरी है गल करनी। डीजीपी साहब की कह रहे,
1: इस इंसिडेंट का हजे किसी ने क्लेम नहीं किया हैगा, पर असी अज्यूम करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी होन करके दिस इज पार्ट ऑफ पाकिस्तान आईएसआईज डिजाइंस टू कॉज डिसरप्शंस इन पंजाब, ते पंजाब एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा हैगा देश के बिहाफ से अगेंस्ट पाकिस्तान। सो एक सिनर्जिक तरीके नाल असी इस इन्वेस्टिगेशन नू अगे लैके जावांगे, जिहड़े परपेटर्स हैगे उन्हां नू अरेस्ट करांगे।
0: हुण डीजीपी साहब मौके ते पहुंचे, और डीजीपी साहब ने मौके ते मुआयना करन तो बाद टेक्निकली ये बयान दिता, जो एक अफसर दा देना बनता भी है, पर अफसर अपना बयान दे रहे हैं, पोलीटिशियन अपना बयान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री साहब अज एक शुकराना यात्रा कर रहे थे उदों जो उन्होंने सवाल किया गया, तो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं ये बीजेपी की साजिश है, बीजेपी पंजाब च माहौल खराब कर रही है, बीजेपी पंजाब च इस तरह का माहौल खराब करके लोगों नूं वंड के दहशत वाला माहौल पैदा करके वोटां लेना चाहती है।
2: बीजेपी फिरकू पार्टी है, बंगाल की चोण जिहड़ी है खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। इहदा मतलब ये जिहड़े बंब धमाके होए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी जांच जारी है, ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां दी तैयारी है। वह इदा ही हिंसा फैला के लोगों डरा के धमका के ही वोटा लेंदे है। मैं बीजेपी वाले नूं कहना चाहना इन्हां हरकतों तो बाज आ जाण, ये हरकतों तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है, सरबत दा भला मंगण वाली बाणी करोड़ों स्पीकरां दे विचों शाम सवेरे उचरी जाती है, असीं दुनिया दा भला मंगण वाले लोग हाँ, तुसीं साडे नाल इस तरह दीआं कोझियां हरकतां ना करो। ये बीजेपी जिहड़ी है ये जिहड़ी स्टेट 'च इलैक्शन लड़नी हुंदी है उत्थे जाके पहलां लड़ाई कराउंदे आ, बेअदबी कानून तो बहुत दुखी ने, क्योंकि इन्होंने लड़ाना सी, तो हुण जे जे कोई बेअदबी होगी इन्होंने दो फिरके भड़काने से आपस, तो फिर उन्होंने सख्त सज़ा हो जूगी, तो कोई इन्हें कहे तो बेअदबी करने तैयार नहीं होना। सो यह बीजेपी के एजेंडे के बिल्कुल उल्टा हो गया। सो बीजेपी कहती है पंजाब की तैयारी है, तो ये जिहड़े छोटे मोटे ब्लास्ट करा के तुसीं डरा के ते लोकां नूं वोटां लेने चाहुंदे हो। मैं बीजेपी नूं कहना चाहुंदा पंजाब ने बहुत कालियां रातां काले दिन देख ले, लोगों के जख्म अजे अले ने, इस करके इस तरह दी हरकतां तो बीजेपी बाज आ जाए।
0: एक पासे डीजीपी, एक पासे मुख्यमंत्री, ये दोवें सरकार का हिस्सा ने। मुख्यमंत्री साहब पंजाब के होम मिनिस्टर भी ने, जिन्हां दे अंडर डीजीपी साहब आउंदे हैं, कि दोनों च तालमेल नहीं हैगा, या कह लो कि मुख्यमंत्री साहब का बयान सिर्फ तो सिर्फ सियासी लाहा लैण की कोशिश, और जो पिछले दो दिनों तो लगातार एक नैरेटिव बन रहा है भारतीय जनता पार्टी भावें अपने वालों नैरेटिव बना रही है कि जी हुण पंजाब की वारी है, उसनों तोड़न की कोशिश, या कह लो कि सियासत दे विच असी इन्ने को अन्ने हो गए कि सानू पंजाब की फिक्र नहीं है, पंजाब की अमन शांति की गल असी नहीं करना चाह रहे, असी मेन रूट्स से नहीं जाना चाह रहे बिना किसी जांच तो। अफसर यह गल कह रहे कि जी पाकिस्तान का हाथ लगता प्राइम ऑफेसी, पर मुख्यमंत्री साहब कहते बीजेपी का हाथ लगता। हुण एक सूबे का मुख्यमंत्री जो यह गल कह रहे जिसनों लैके बीजेपी हुण सवाल खड़े कर रही है, रवनीत बिट्टू ने बहुत कुछ बोलता मुख्यमंत्री बारे, बहुत कुछ बोलिया, पता नहीं की बोलिया, सुन लो।

0: गवाही देके
1: तो बच जाएगी।
2: बचाओ।
0: क्या कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए?
3: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
4: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
1: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर्थ लड़ने के लिए,
4: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
5: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
4: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े की जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
6: क्वांटम फाइनेंशियल प्लानिंग 1998 तो इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दिया सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, जिस तरह के लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस एंड डिसेबिलिटी इंश्योरेंस,
7: गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्लान जिवें RRSP, RESP या TFSA ਅਤੇ ਨੌ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਲੈਨਸ ਵਿੱਚ 8-12% ਰਿਟਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਮ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
8: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, $60,000 ਤੋਂ $1,00,000 ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਇਨਕਮ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

0: रब ना करे जे तुहाडी कार ट्रक जां ट्रेलर किते भी एक्सीडेंट हो गया है जां खराब हो गई है तां फिकर करन दी जरूरत नहीं। अज ही कॉल करो एसटी टोइंग जां कामटो 416-243-7777 जां तुसी कॉल कर सकते हो 416-513-1313। ए सारी इंश्योरेंस कंपनी नाल खुद डील करदे ने एसटी टोइंग।
1: क्या लगा था तुझे मेरे खिलाफ गवाही देके
2: तू बच जाएगी?
1: क्या कोई नहीं आएगा तुझे बचाने के लिए?
3: वाह मेरे हीरो, आते ही कर दिया गुंडों को जीरो।
1: मेरे दो तीन आदमियों को मार के खुद को तू शेर समझ रहा है?
2: अरे पूरी फौज पड़ी है तीर से लड़ने के लिए,
1: तो भेज अपनी फौज, अब तू ही आ जा।
2: अरे ऐसा तू क्या खाता है यार, इतनी ताकत कहां से लाता है?
1: मेरा भरोसेमंद साथी एक्स प्लस गोल्ड कैप्सूल, जो देता है मुझे घोड़े के जैसी चुस्ती फुर्ती और ताकत, और साथ में बढ़ाता है मेरा स्टैमिना।
4: The name you can trust in transportation industry. Hire kar rahe ne AZ company drivers and owner operators for Midwest, Southwest, California and Toronto Montreal run. Steady work around the year. All new equipments de naal 24/7 the friendly dispatch ate vadhiya pay rate te weekly payment basis te direct deposit lane layi ajj hi call karo. Sarai Trucking 905-794-8837 905-794-8837 Sarai

एक कहानी है माझे दी धरती ते जन्म ले एक सूरमे दी। ओ बच्चा जिस दी किस्मत ने उसनू दुखा नाल तोलिया पर हिम्मत ने सोने वांग खरा कर दिता। ओ सी हरी सिंह नलुआ जिन्ना ने बचपन तो ही अपनी दलेरी दे निशान छड़े। हरी सिंह एक उपल खत्री सिख परिवार विच जन्मिया बच्चा। पिता सरदार गुरदयाल सिंह शुकर चक्किया मिसल दे माहिर घोड़ सवार जिन्हां दे हथ ने तलवार नू न्यां दा हथियार बनाया सी।

0: वेख पुत, तेरे पिताजी आ गए ने।
1: हाँ माता, पिताजी आ गए ने। पिताजी।
2: मेरे शेफ पुत्रा, की हाल ने?
0: सरदार जी, हरी बहुत जिद करदा है लाहौर जान दी।
2: अच्छा जी, एक दिन जरूर जावेगा तू हरी।

0: तेनू महाराजा जी ने सम्मानित करन लई दरबार विच सद्दे है, जल्दी ही आ जाओ।
1: ठीक है खालसा जी, धन्यवाद।
2: हरी पुत्र खालसा जी की कहेगा?
1: मामा जी आओ चलिए, महाराजा जी ने सद्दे है दरबार विच।
2: अच्छा चल फिर चलते हैं।

0: महाराज, असी जंगल विच बहुत दूर आ गए हां, होर अगे जाना ठीक नहीं।
1: मैं थोड़ा होर अगे जावांगा, तुसी इत्थे ही रुको।

साल 1807 एक किला कसूर जो सिख साम्राज लई साला तो एक चुनौती बनिया होया सी। तीन बार हमले हुए पर इस बार कुछ वखरा सी। मैदान विच उतरिया एक नौजवान ओसी हरी सिंह नलवा। जब जंग दी पहली टक्कर हुई तलवारा चमकिया घोड़े दौड़े अते नारे गूंजे जो बोले सो ने।

0: हरी सिंह नलवा ने दुश्मना के दिलों में खौफ पैदा कर दिया। हर बार वो अगे ही वध्या। महाराजा रणजीत सिंह खुद देख रहे सन, एक नवा सूरमा जन्म ले रहा सी। अते फिर चौथी कोशिश इतिहास बन गई। कसूर फतेह हो गया। उस दिन सिर्फ एक किला नहीं जीता गया, सिख साम्राज ने अपना एक महान योद्धा लभ लिया, हरी सिंह नलवा, एक नाम जो आने वाले समय में दुश्मनों लिए दहशत बन गया। अते इसी उसकी जीत की शुरुआत। लाहौर के शाही महल विच अज एक खास दरबार सजिया सी, जिथे शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह एक नौजवान सूरमे का इंतजार कर रहे सन। दरबार के दरवाजे खुलते हैं, अंदर दाखिल होता है हरी सिंह नलवा, उही नौजवान जिसने कसूर की जंग विच अपनी बहादुरी नाल सबनू हैरान कर दिता सी। महाराजा दियां अखां विच खुशी सी ते चेहरे ते मान। वो अगे वधे अते प्यार नाल हरी सिंह नलवे नूं मिले। हरी सिंह, तू कसूर की जंग विच बहुत ही वधिया भूमिका निभाई है, तेरी बहादुरी सिख राज की शान है। फिर महाराजा ने ऐलान किया, अज असीं तैनूं तेरी सेवा दे सन्मान विच एक जागीर बख्शदे हां। अते उस दिन एक नौजवान सूरमे नूं मिलिया सिर्फ इनाम नहीं, एक नवी पहचान मिली। हरी सिंह नलवा हुण सिख साम्राज का एक अटुट हिस्सा बन चुका सी।
1: कसूर दी जंग तो बाद एक नवा अध्याय शुरू होया। एक नौजवान सूरमा जिसने अपनी तलवार नाल इतिहास लिखना शुरू कर दिता सी, ओ सी हरी सिंह नलवा। हर जंग विच हर मोर्चे ते उसकी बहादुरी चमक दी गई, अते नाल ही खालसा राज दियां हद्दां दूरों दूर तक फैल दिया गई। एक पासे जित्तां दी लड़ी, दूजे पासे वध दी ताकत।